0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Melbourne Museum ki nayi bhavya pradarshini. Rome, Empire, Power, People अब खुल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल म्यूजियम विक्टोरिया डॉट कॉम डॉट एयू.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी. कलर, सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, टिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा.

आप सुन रहे हैं 92.3 FM पे गीतांजलि इंडियन रेडियो। हर शनिवार रात में 9 बजे गीतांजलि के सभी श्रोताओं को राकेश और पल्लवी का प्यार भरा नमस्कार। जुलाई का महीना शुरू हो गया है और आधा साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई वो दिन है जब अमेरिका ने ब्रिटेन के शासन से आज़ादी की घोषणा की थी, इसलिए हर साल इस दिन पूरे अमेरिका में परेड, आतिशबाजी, संगीत कार्यक्रम और अन्य समारोह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और सुनने में आया है कि जून जुलाई के महीने में काफ़ी लोग अभी कैलाश यात्रा भी करने गए हैं और कुछ लौट के भी आ गए हैं। आशा है कि आने वाले सप्ताह में हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे।

0: पिछले 3 दशकों से आपका अपना इंडियन प्रोग्राम गीतांजलि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 3ZZZ 92.3 FM का एक अहम हिस्सा है। 3ZZZ.com.au वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर अपना सपोर्ट आपके लोकल इंडियन रेडियो स्टेशन को दीजिए। एनुअल मेंबरशिप $16, सीनियर या कंसेशन कार्ड होल्डर्स मात्र $11। योर सपोर्ट इज द लाइफलाइन ऑफ दिस स्टेशन। थैंक यू।
1: सबसे बड़ी खबर तो ये है, अगले हफ्ता भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया आने का कार्यक्रम है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया होगा। इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी से मुलाकात करेंगे और मेलबर्न में रहने वाले भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। साथ ही में वे न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया का भी दौरा करने वाले हैं। पिछली बार सिडनी में हुए बड़े कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग सम्मिलित हुए थे। उस मौके पे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई करते हुए उन्हें द बॉस कहा था। इस बार 40,000 लोगों ने मोदी जी से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले सिडनी स्थित आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने अवतार फॉर्म्स ऑफ विष्णु नामक एक विशेष प्रदर्शनी शुरू की है। इसकी जानकारी भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने दी। ये ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी प्रदर्शनी है जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस प्रदर्शनी में 200 से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, पारंपरिक चित्र और आधुनिक कला शामिल है। यह प्रदर्शनी अक्टूबर 2026 तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। अभिनेता निर्माता आमिर खान 9 जुलाई को मेलबर्न में फिल्म लगान की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के साथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अपने 17वें संस्करण का आगाज करेगा जो मुख्य फिल्म महोत्सव की निर्धारित तिथियों से लगभग एक महीने पहले आयोजित की जा रही है। IFFM का 17वां संस्करण 13 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित होगा। इसकी शुरुआत मेलबर्न के ACMI सिनेमा में होने वाले कर्टेन रेजर कार्यक्रम से होगी, जहां आमिर खान इस वर्ष के फिल्म महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसी अवसर पर लगान की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग भी आयोजित की जाएगी। गेट रेडी फॉर द अनफॉरगेटेबल नाइट एज द म्यूजिक ऑफ इंडियन सिनेमा टेक्स ओवर मेलबर्न। ऑन थर्सडे 13th अगस्त द हिस्टोरिक पैलेस थिएटर विल लाइट अप विद द बिगेस्ट स्टार्स, स्पेक्टेकुलर लाइव परफॉर्मेंसेस एंड हाई एनर्जी म्यूजिक डांस। तो हर साल की तरह इस बार भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही रोमांचक और बड़े सितारों से भरा हुआ शानदार फिल्म फेस्टिवल। IFFM में हर साल कई तरह के इवेंट होते हैं, जैसे भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग, प्रीमियम और स्पेशल शो, प्रसिद्ध कलाकारों के साथ बात, मास्टर क्लास और फिल्म वर्कशॉप, डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम और इंडिपेंडेंस डे पर स्पेशल सेलिब्रेशन होगा फेडरेशन स्क्वायर में।

पिछले सप्ताह हमारे श्रोतागण मंजुला जी ने हमसे एक फरमाइश की थी। उन्हें फिल्म हमराज का नीले गगन के तले गाना सुनना था, जो कि हम किसी कारणवश नहीं सुना पाए, पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो गीत। आइए, आपके लिए मंजुला जी, ये गीत है फिल्म हमराज का, जो कि 1967 में आई थी। आवाज है महेंद्र कपूर की, म्यूजिक है रवि का और लिरिक्स है साहिर लुधियानवी जी के।

जब मैं ये गाना ढूंढ रही थी तो मैंने देखा कि महेंद्र कपूर जी के इतने अच्छे अच्छे गीत हैं, तो क्यों ना आज हम महेंद्र कपूर जी को याद करें। महेंद्र कपूर हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर के प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। उनकी दमदार और भावपूर्ण आवाज विशेष रूप से देशभक्ति गीतों, भजनों और रोमांटिक गीतों के लिए जानी जाती है। उन्होंने 50s से लेके 70s तक, इनफैक्ट 80s में भी उन्होंने एक दो गाने गाए हैं। सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को बहुत ही मोहित किया है अपनी आवाज से। देखा जाए तो मनोज कुमार के ऊपर उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। उन्होंने विश्वजीत से लेके राज बब्बर जी को आवाजें दी हैं, तो बहुत ही लंबे पीरियड तक उन्होंने गाने गाए हैं। हालांकि हिंदी फिल्म जगत में बहुत ज्यादा गाने नहीं गाए हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान देशभक्ति गीत मेरे देश की धरती से जुड़ी है, जिसे आज भी भारत के सबसे प्रिय देशभक्ति गीतों में गिना जाता है।

1959 में एक पिक्चर आई थी धूल का फूल, और उसके सारे गीत बहुत पॉपुलर हुए थे। आशा भोसले जी के साथ महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाया ये रोमांटिक गीत सुनिए। बोल लिखे हैं साहिर ने, म्यूजिक है एन दत्ता का।

फिल्म हमराज और गुमराह दोनों के ही अधिकतर गीत महेंद्र कपूर जी ने गाए थे और सुनील दत्त पे पिक्चराइज किए गए थे। गुमराह 1963 में रिलीज हुई थी। साहिर लुधियानवी जी का लिखा और रवीद के संगीत से सजा ये गीत आज भी महफिलों की शान है।

राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा द्वारा अभिनीत 1970 की फिल्म गीत, उसके गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया ये गाना। बोल है हसरत जयपुरी के और संगीत है कलाजिया।

1972 में विश्वजीत की फिल्म किस्मत ने बॉक्स ऑफिस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, पर महेंद्र कपूर का गाया ये गीत हर अंताक्षरी की जान है। म्यूजिक है ओपी नैयर का, गीतकार है एस एच बिहारी।

0: 1972 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी कंगन, उसका ये गीत संजीव कुमार और माला सिन्हा पे पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही अच्छा लगा था। संगीतकार है कलांजी आनंद जी और बोल लिखे हैं अनजान ने। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की।
1: झुके जो तेरे ने

1963 में गुरुदत्त और आशा पारेख अभिनीत फिल्म भरोसा का ये प्यारा गीत सुनिए। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन ने और संगीत दिया है रवि ने।

वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हमारे जाने का समय हो रहा है। आप अपने सुझाव और फरमाइश हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है indian.program@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज ZZZ Radio गीतांजलि इंडियन प्रोग्राम पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। हमें आपके सुझाव और फरमाइश का बहुत इंतज़ार रहता है। जाते जाते सुनते हैं इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊँगा का ये गीत। फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।